0: मेरे पिताजी कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता।
1: हाँ, लेकिन ऐसा ही तू बोल बच्चन करता रहेगा तो एड़ी से सर तक दर्द होगा।
2: Yeah, you talking not right, and body pain from toe truck to headlight.

0: पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: गड़े गड़े ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रैपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड

लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: love listening.
1: Yeah.
0: Feel really good.
2: You'll feel it.
0: Bringing the sound of South Africa to you.
3: मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी।

0: Ach, Barry, I don't know what I'm doing anymore. My life has taken a hard left at 3 goals.
1: It's not your life that's turning, Brew. It's your steering.
0: My steering?
1: Your car's pulling left like your decisions. Go get top quality Miler steering parts from Goldwagen. That will set you straight.
0: Wait, I feel aligned.
1: It's just your steering that needed direction. Goldwagen, keep on driving.
2: You are listening to Geek Dangeli. You are listening to Geek Dangeli. Lotus FM.
3: Namaste, dosto. You are listening to Geek Anjali, आपकी फेवरेट आरजे खुशी पारेख के साथ. तो मैं आपका स्वागत करती हूँ गीतांजलि पे. आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारी अदाकारा, लेकिन उससे पहले आपको गेस करना पड़ेगा कि वो अदाकारा कौन है. तो मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी और आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. ओके, सो दिस एक्ट्रेस, she was Miss India in the 1980s. ये Miss India बनी थी 1980s में. मैं exact साल नहीं बताऊंगी वरना आपको पक्का पता चल जाएगा. So she was Miss India in the 1980s. She is one of the wealthiest Bollywood actress. She also co-owns an Indian Premier League cricket team, Kolkata Knight Riders. That's a very big hint right there. वो Miss India बनी थी, वो उनके पास Kolkata Knight Riders के shares है, वो एक co-owner है Kolkata Knight Riders की, और उन्होंने multilingual movies में काम किया है, जैसे कि Tamil, Telugu, Malayalam, Bengali, Punjabi, Gujarati, English, और of course Hindi. और Kiara अडवाणी उनकी नीस है. तो क्या लगता है कौन हो सकती है ये एक्ट्रेस? उनके पास एक प्रोडक्शन हाउस भी था जिसका नाम था ड्रीम्स अनलिमिटेड, एंड शी को ओन दैट विद शाहरुख खान. आप सोचिए कि कौन हो सकता है, और तब तक हम सुनते हैं एक प्यारा सा गाना.

0: You are listening to Geetanjali. Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
1: Alright, so jaise uche kaun ho sakti hai ye actress. To abhi jo gaana aapne suna, wo actually unki debut movie se tha. To unhone apni Bollywood mein debut ki thi, Qayamat se Qayamat tak se. Aur unke kaafi sari movies hai. Hum hai Rahi Pyar Ke, Dar, Ishq, Yes Boss, Diware, Diwana Mastana, Mr. and Mrs. Khiladi, My Brother Nikhil, Jhankar Beats, Gulab Gang, Raju Ban Gaya Gentleman, Swarg Darar, Bol Radha Bol, Prem Lok, Phir Bhi Dil Hai Hindustani, Arjun Pandit, I Am, aur Pratibandh. काफी सारी मूवीज थी, बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस है. मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा आंसर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, और उनमें से कई सारे आंसर्स सच है. आपने बिल्कुल सच पहचाना है जो एक्ट्रेस है वो, लेकिन कुछ आंसर्स है जो किसी और एक्ट्रेस के नाम ले रहे हैं. तो मैं आपको थोड़ी और देर देती हूँ और आप मुझे बताएं कि कौन हो सकता है. तब तक सुनिए ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2.

0: You know when you just need to relax, become one with yourself again, release and nourish those chakras. We've got just the thing. No green smoothies, no cyclic breathing, just you, Zabit, and seven chakras. It's a different type of game for a special kind of player. Seven Chakras is only available on www.zabit.co.za or on our app. Zabit, roll with us. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. All games are fixed odds betting events. NRGP 0800 006 008 or WhatsApp help to 076 657 0710.
1: You are listening to Geetanjali, Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
2: You are listening to Geetanjali with your very own Khushi Parekh. मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ गीतांजलि पर. और जी हाँ, आप सब ने जिन्होंने रॉन्ग आंसर्स दिए थे उन्होंने भी करेक्ट करके राइट आंसर्स दे दिए हैं. तो ये एक्ट्रेस है जूही चावला. वेल डन टू ऑल ऑफ यू हु गॉट इट राइट. जी हाँ, जूही चावला मिस इंडिया बनी थी 1984 में. शी को ओन्स कोलकाता नाइट राइडर्स विद हर हस्बैंड एंड शाहरुख खान एंड ऑल अदर फैक्ट्स दैट आई टोल्ड यू. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जूही चावला जी के बारे में कि उन्होंने राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, वो सारी मूवी टर्न डाउन की थी. मतलब कि शी टर्न दोज रोल्स डाउन एंड शी डिक्लाइन द लीड रोल इन सच मैसिव ब्लॉकबस्टर्स एंड दोज रोल्स एक्चुअली वेंट टू करिश्मा कपूर. एंड वो व्हाट अ ब्यूटिफुल जॉब करिश्मा कपूर डिड. इट वॉज ब्यूटिफुल. हाउएवर मुझे ये बात पता चली है कि दिल तो पागल है उन्होंने क्यों डिक्लाइन की थी. उनको सेकेंड लीड नहीं बनना था माधुरी दीक्षित के सामने, क्योंकि वो खुद एक टॉप लीड एक्ट्रेस थी उस टाइम की. तो उनको सेकंड लीड नहीं बनना था माधुरी दीक्षित जी के सामने, इसलिए उन्होंने दिल तो पागल है डिक्लाइन की थी. लेकिन सालों बाद वो कहती हुई सुनाई दे रही थी कि वो रिग्रेट कर रही थी वो डिसीजन. सो इसलिए जब गुलाब गैंग उनके नसीब में आई तो उन्होंने फटाक से हाँ कह दिया कि हाँ, मैं माधुरी जी के साथ बिल्कुल ये मूवी करूंगी. सो वाजंट दैट अ ब्यूटिफुल मूवी एज वेल.

0: Ach, Barry, I don't know what I'm doing anymore. My life has taken a hard left at career goals.
1: It's not your life that's turning, Brew. It's your steering.
0: My steering?
1: Your car's pulling left like your decisions. Go get top quality Miler steering parts from Goldwagen. That will set you straight.
0: Wait, I feel aligned.
1: It's just your steering that needed direction. Goldwagen, keep on driving.
2: You are listening to Geek Tangeli. You are listening to Geek Tangeli. Lotus FM.
3: You are listening to Geetanjali. आप सुन रहे गीतांजलि खुशी परेख के साथ लोटस FM पे. आशा करती हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा इन ब्यूटिफुल गानों के साथ और हमारे इंटरक्शंस के साथ भी. Alright, so another interesting fact about जूही चावला. इश्क के शूटिंग के वक्त आमिर खान और अजय देवगन जी ने जूही चावला जी का जीना इतना हराम कर दिया था, मतलब कि वो दोनों इतने बड़े प्रैंगस्टर्स हैं, स्पेशली अजय देवगन. लेकिन जूही चावला जी मतलब कि बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई थी अखिया तू की शूटिंग के वक्त, और वो इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि वो अपसेट हो गई आमिर खान जी से, और आमिर खान जी अपसेट हो गए जूही चावला जी से. उन्होंने इस मूवी के बाद 4-5 सालों तक बात नहीं की, इतने अपसेट थे एक दूसरे से वो. इमेजिन. एंजॉय करिए ये ब्यूटीफुल सा गाना इश्क से.

0: and save on deals like Danone NutriDay Smooth Yogurt. Buy two 100 gram six packs for only 32 Rand. Yum Yum Peanut Butter, 400 grams for just 36.99. And Stay Soft Fabric Softener, 500 mils for only 26.99. Valid till 12 July, only at ShopRite.
1: मैं हूं खुशी पारेक और स्वागत करती हूं आपका गीतांजलि के इस शो पे. ऑलराइट, तो मेरे पास आपके लिए एक दूसरा सवाल है आज. तो क्या आप तैयार हैं इस दूसरे सवाल के लिए? क्या आप मुझे एक मूवी बता सकते हैं, एक मूवी जो जूही चावला और सलमान खान ने साथ में की हो?

0: You are listening to Geetanjali. Geetanjali. Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
1: आप सुन रहे हैं गीतांजलि अपनी फेवरेट आरजे खुशी पारेख के साथ. तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनमें लिखा है कि आप शो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो. और जी हाँ, आपने आंसर्स भी दिए हैं जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप मुझे एक मूवी बता सकते हैं जो जूही चावला और सलमान जी ने साथ में की हो. तो उन्होंने स्क्रीन शेयर की है कुछ मूवीज में, जैसे कि दीवाना मस्ताना, अंदाज अपना अपना, या लेकिन उन्होंने और सलामे इश्क भी. जी हाँ, सलामे इश्क भी, लेकिन लीड रोल्स नहीं किए ऑपोजिट ईच अदर. सो दैट्स द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर, क्योंकि कोई मूवी है ही नहीं. ऐसा कहा जाता है, मतलब कि काफी सारे रूमर्स हैं, उनमें से एक रूमर ये है कि सलमान जी ने जूही चावला जी का हाथ मांगा था शादी के लिए, और शायद उन्होंने या उनकी फैमिली ने ना कह दिया था. तो सलमान जी को इतना बुरा लगा कि उसके बाद उनके साथ कोई मूवी ही नहीं की उन्होंने. सो डोंट हैव अ मूवी टुगेदर ऑपोजिट ईच अदर एज लीड्स. तो जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन आशा करती हूँ कि आपको बहुत बहुत मजा आया होगा. मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ. एक प्यारा सा गाना छोड़े जा रही हूँ, रुक जा ओ जाने वाली. शो को तो नहीं रोक सकते, जाने वाले को तो नहीं रोक सकते, लेकिन ये प्यारा सा गाना जरूर सुन सकते हैं. मैं खुशी पारेख साइनिंग ऑफ.